0: जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट कितनी बार बदली, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक, और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्मों में। ऑफ कोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक। और जब इसका टीजर आया था सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज इट अबाउट? तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टिल अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल टिल 1961. So the story is set in that era where it was time where a lot of Portuguese were, Indians were there. So in between that, there was trade, a lot of port, business. So in that era, if there is struggle for power, greed, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there is a lot of complex human emotions where we there's a deep love story in it, there's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: So setting purane daur ki hai, isme gangsters hain, ek power struggle hai, pyar bhi hai, aur saath mein revenge bhi. Yani ek proper larger than life cinematic masala universe. Lekin teaser ke baad jis cheez ne mujhe sabse ज़्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है। बस एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा। It's not safe for their viewing. Mirchi Talk 20 पर debuting in the top 10 और number 9 ये है टॉक्सिक का तबाही।
2: Number 9.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 8.

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था। मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉड सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर इज शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम। द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जाम्पल, चुनरी चुनरी। आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय। लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, एंड इट हैज बीन संग बाय द फ्लॉलेस, द परफेक्ट सोनू निगम। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक,
1: टॉप 20 रिवाइंड।

हर फिल्म मेकर का एक सपना होता है, एक ऐसी फिल्म बनाना जिसे लोग सालों बाद भी याद रखें। लेकिन फिर एक कहानी ऐसी भी है जिसे याद रखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बस याद रहती है। रामायण आज सिनेमा उस दौर में खड़ा है जहां उसके पास लगभग सब कुछ है, आईमैक्स, डॉल्बी एटमॉस, सीजीआई व्हिच लुक्स अल्ट्रा रियल, वर्चुअल प्रोडक्शंस, ग्रीन स्क्रीन्स, टेक्नोलॉजी। आज फिल्म मेकर्स पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, समंदर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, शहरों को हवा में उड़ा सकते हैं, और वो सब दिखा सकते हैं जो कभी सिर्फ इमेजिनेशन हुआ करती थी। लेकिन फिर भी एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं है, रामायण को और बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि रामायण की ताकत कभी उसके विजुअल्स थे ही नहीं, उसकी ताकत थी उसके किरदार, उनके इमोशंस, उनके फैसले, उनकी वैल्यूज, और सबसे बढ़कर हर जेनरेशन का उस कहानी से अपने खुद का रिश्ता। इसलिए मुझे लगता है रामायण का असली चैलेंज कभी उसकी कहानी सुनाना थी ही नहीं, वो तो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। असली चैलेंज है सिनेमा उस कहानी में ऐसा क्या जोड़ता है जो पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया। अगर रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और पूरी टीम ये कर गई तो ये सिर्फ एक कामयाब फिल्म नहीं होगी, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। लेकिन फिलहाल इस दुनियादारी वाले काउंटडाउन पर नंबर 4 पर इस हफ्ते है माशूका फ्रॉम कॉकटेल, लेकिन काउंटडाउन आगे बढ़ेगा गुरु रंधावा के गाने कहर के साथ, विच इज ऑन नंबर 3।

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है। Because the song is out of the countdown after almost 60 weeks, लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

0: एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा वाला, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। वैसे हर जेनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज्ड बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ
1: नंबर वन।

है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आदमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Mirchi. It's hot.
1: दे, दिन तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर

0: Mirchi, it's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: तारीखें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, पर कुछ गाने हमें एक पूरा जमाना याद दिला देते हैं. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. ये वो शो है जहां हफ्ते के हॉटेस्ट टॉप 10 इंडिपेंडेंट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम. पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक नंबर 10. उसके बाद नई नवेली एंट्री, जारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी. इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 9 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
4: नंबर 9.

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी, और नई नवेली एंट्री डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे जब कुछ ज्यादा पता नहीं था तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 ईयर्स हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइज तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है अब मुंबई में गाने बनाती है, उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, या आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

0: के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना

0: There's something so honest, so soothing about this song. गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक. नाम याद रख लीजिए, क्योंकि गाना तो डेफिनेटली याद हो गया आपको. बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. संजू राठौर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम करके बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 8.

0: कैश किंग की आवाज में एक गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहाँ लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं। जहाँ तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है। पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंड ट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय की म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी। हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: सोच को कैसे लेंगे सांस क्यों? एक तरफा तराजू तेरी हंसी मेरे आंसू घुट घुट की क्यों सांस लूं? उसे देगा क्या हिसाब
1: पिंजरा मजाल ने खाना परिंदे आने उड़ जाना तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना सारा लाना बाना परिंदे आने उड़ जाना तेरा

ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे कनिगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8 यार

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था, मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी, मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉट सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर इज शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम, द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जांपल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, एंड इट हैज बीन संग बाय द फ्लॉलेस, द परफेक्ट सोनू निगम। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक,
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर टू।

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है, बिकॉज़ द सॉन्ग इज आउट ऑफ द काउंटडाउन आफ्टर ऑलमोस्ट 60 वीक्स। लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा वाला, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज्ड बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर 1, दिस इज गहरा हुआ नंबर 1।

0: इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं because we love our movies. So till the next time we meet on another episode of the Mirchi Top 20, this is Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Energy. It's hot.
1: Let's go crazy.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात और सी।
1: अरे 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Avicii. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तो

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना

अटेंशन गाइस, आज का वेदर बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो कहता है मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ और फिर 5 घंटे हमारा मूड चेंज करके चला जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मौसम का हाल चाल पता करने का टाइम आ चुका है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्काई इज क्लाउडी लेकिन फील हो रहा है अराउंड 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हवा कह रही है स्वेटर मत पहनो यार, बट दूर भी मत रखना स्वेटर को। अच्छी खबर ये है कि सुबह से 2 बजे दोपहर तक सनशाइन जो है अपनी अटेंडेंस बीच बीच में लगाती रहेगी। सो इफ यू बीन वेटिंग टू ग्रैब योर मॉर्निंग कॉफी, वॉक द डॉग या फिर ऑफिस लंच ब्रेक बाहर एंजॉय करना चाहते हो, दैट्स योर गोल्डन विंडो। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है 3 बजे के बाद, जब ड्रिजल का थोड़ा सा चांस बनता है। कोई बॉलीवुड स्टाइल बारिश नहीं होने वाली लेकिन इतनी हो जाएगी कि फ्रेशली वॉश्ड कार तुमको साइड आई दे सकती है। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 67 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है लेकिन फील होने वाला है 88 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये याद रखो कि ह्यूमिडिटी, सनशाइन ये सब मिलकर ना कभी कभी वेदर को थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करवा देते हैं। और विंड्स काफी काम है, गस्त सिर्फ 7 किलोमीटर पर आवर तक चलने वाले हैं, तो आज हेयर स्टाइल का ज्यादा टेंशन नहीं है। पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट नो रेन थी लेकिन अगले 24 घंटों में अराउंड 3 मिलीमीटर की एक्सपेक्टेड रेनफॉल है, मतलब अम्ब्रेला को आज लीव नहीं मिलने वाली है, साथ में कैरी करना पड़ेगा और साथ साथ में अपना वाटर बॉटल कैरी करना। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, wear your sun protection SPF 50+++ and of course as I always say layer ke player bano। और तुम ऑफ एयर भी मुझसे बातें कर सकते हो, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल जब तक यही बैठने का कहीं जाने का नहीं, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला एंड इट्स टाइम टू जंप इनटू आवर डेली टाइम ट्रैवलिंग जर्नी। शुरू करते हैं 1866 से। इमेजिन व्हाट्सएप, लेकिन विद एब्सोल्युटली नो ब्लू टिक्स। आज के दिन एक परमानेंट ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल ने कनेक्ट किया था यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को। मैसेजेस दैट वंस टुक वीक्स suddenly started traveling in minutes. Then comes 1953. The fighting in the Korean War officially paused with an armistice, creating the demilitarized zone or DMZ between North Korea and South Korea. Fast forward to 1996, the Summer Olympics in Atlanta were shaken when a bomb exploded at Centennial Olympic Park. It was a heartbreaking day that reminded the world how precious peace and togetherness really are. And aaj ke din we also remember two unforgettable legends. In 2003, comedy icon Bob Hope took his final bow at the incredible age of 100. And in 2015, India lost one of its brightest minds, Dr. APJ Abdul Kalam, scientist, teacher, and people's president. The man who proved that dreams aren't what you see while sleeping, they are what keep you awake. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इफ यू लव दिस टाइम ट्रैवलिंग जर्नी विथ मी, मुझे फटाफट से डीएम करके बताओ। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए मिर्ची दे आर बैंगर्स चलाते हो तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो एक क्विक स्पोर्ट्स अपडेट पता कर लेते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर।
1: मिर्ची वॉच इट।
0: इंडिया की ऐशा सिंह ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीत लिया है और पोडियम पे इंडियन डबल धमाका भी हुआ है क्योंकि ओलंपिक स्टार मनु भाकर ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। मतलब टारगेट्स भी हिट हुए और देसी हार्ट्स भी हिट हुए। अब चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ। वेट लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म पर मसल भी फ्लेक्स हुए और तिरंगा भी लहराया गया। राजा मुथु पांडी ने मेंस 65 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीता है और चनम्बम ऋषिकांता सिंह ने मेंस 60 केजी इवेंट में एक और सिल्वर इंडिया की झोली में डाल दिया है। साथ ही साथ 121 केजी स्नैच का पर्सनल बेस्ट भी। वाओ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऋषिकांता को कंग्रेचुलेट करते हुए उनकी डेडिकेशन और परफॉर्मेंस की तारीफ की है। इंडिया इज करंटली 8th इन द कॉमनवेल्थ गेम 2026 स्टैंडिंग विथ 4 मेडल्स, जिसमें से एक है गोल्ड, 2 है सिल्वर एंड 1 इज ब्रॉन्ज। अब चलो तुम्हारे लिए चलाती हूँ कुछ मिर्ची तैयार गाने। तब तक तुम मुझे सोशल्स पर फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग. अरे उठ जाओ यार, दिस इज प्रिसिला विद यू एंड यू आर ऑफिशियली प्लग्ड इनटू मिर्ची मॉर्निंग्स. यहाँ पर कॉफी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, गॉसिप थोड़ा सा गर्म होता है और वाइब्स जो होती है फुल ऑन मिर्चीदार होती है. व्हेदर यू स्टक ऑन द टर्नपाइक रेसिंग टू कैच द ट्रेन प्रिटेंडिंग योर कैमरा इज स्टिल कनेक्टिंग इन अ वर्क मीटिंग, अगले कुछ घंटे मैं तुम्हारे साथ चिपक कर बैठने वाली हूँ यहाँ पर, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग शुरू हो चुका है. और आज का मिशन सिंपल है, थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा गाएंगे, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया को फील करेंगे और एक फुल टैंक ऑफ गुड एनर्जी बिफोर द वर्ल्ड स्टार्ट्स आस्किंग फॉर पासवर्ड्स, डेडलाइंस एंड क्विक 5 मिनट्स कॉल्स, जो कभी भी 5 मिनट के कॉल्स होते नहीं है. सो बगल आप, सिप दैट चाय या कॉफी, हैव दैट ब्रेकफास्ट, वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दो और अपनी मिर्ची वाइब्स को थोड़ा सा जगा दो, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स यू गॉट दैट वन फ्रेंड राइडिंग शॉटगन विथ यू. नाम है प्रिसिला. सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, फटाक से मुझे फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पर भी. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

मिर्ची, इट्स हॉट। Hey there, good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवक at 3 on मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन काफी वायरल हो रहा है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से इंस्टाग्राम पेज ने बहुत तेजी से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन किए हैं। कैंपेन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को रिमूव करने की डिमांड कर रहा है और मेरिट बेस्ड एडमिशंस और गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा है। जैसे हर वायरल ट्रेंड के साथ होता है, ऑनलाइन डिस्कशंस भी काफी एक्टिव हो चुके हैं इसके बारे में। देखना यह है कि ये डिजिटल कॉन्वर्सेशन आगे किस डायरेक्शन में जाती है। नंबर टू पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP फिर हेडलाइंस में है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद पार्टी लीडर्स के सेलिब्रेशन का एक वीडियो वायरल हुआ। इस पर क्रिटिसिज्म के बाद पार्टी स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने कहा है कि यंगर जनरेशन और जेंजी अपने इमोशंस और रिएक्शंस को अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और उनके हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट को सब लोग एक नजरिए से नहीं देख रहे। इंटरनेट एज ऑलवेज इज डिवाइडेड। एंड फाइनली बिहार के सिवान में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर अलेजेडली राइफल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स इंजर भी हुए थे, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने वार्निंग के लिए हवा में फायरिंग की थी। अथॉरिटीज अब पूरे मामले की जांच कर रही है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है। I'll meet you with more updates in अगले मिर्ची आवर का 3। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम हो गया है क्विक बॉलीवुड अपडेट का। तो विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा ने मुंबई के वर्सोवा एरिया में एक ब्रांड न्यू लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। ये अपार्टमेंट करीब 2,644 स्क्वायर फीट का है और साथ में 316 स्क्वायर फीट का एक्सक्लूसिव एरिया है और 3 कार पार्किंग स्पेसेस भी है। मतलब पार्किंग की टेंशन तो टोटली नॉट आउट हो चुकी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस ड्रीम होम की कीमत अबव 18 करोड़ रुपीस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी बिल्डिंग में एक्ट्रेस टबू ने भी कुछ महीने पहले अपना अपार्टमेंट खरीदा था। लगता है इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग काफी ब्लॉकबस्टर हैं। वैसे घर चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट हो या सी व्यू पेंट हाउस हो, असली लग्जरी वो होती है जहां पर गर्मा गर्म चाय हो, स्ट्रॉन्ग वाईफाई हो और कुछ मिर्चीदार बैंगर्स चल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर वो ग्लो हो जो सिर्फ ज्वेलरी दे सकती है। ज्वेलरी की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आरके ज्वेल्स की तरफ से एक स्पार्कलिंग ऑफर चल रहा है। सिलेक्टेड एक्सक्विजिट कलेक्शन पर मिल सकता है तुम्हें फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड और आरके ज्वेल्स में तुम्हें ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ साथ क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप और ग्रेट वैल्यू भी मिलने वाली, क्योंकि थोड़ी सी स्पार्कल तो हर दिन बनती है, राइट? ऑफकोर्स यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है और अभी थोड़ी सी मिर्ची तो बनती है। आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरे साथ बने रहो, मेरा नाम है प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

अगर आज तुम्हारा बर्थडे है तो एक काम करो, कैलोरीज, एज और अलार्म क्लॉक तीनों को आज के लिए इग्नोर मारो। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और पता है आज तुम्हारा बर्थडे कुछ प्रिटी अमेजिंग सेलिब्रिटीज शेयर कर रहे हैं। कॉमेडी की क्वीन माया रूडोल्फ, जिन्होंने सैटरडे नाइट लाइव और ब्राइड्समेड से दुनिया को हंसाया है। मार्शल आर्ट्स के लेजेंड डोनी येन, द मैन हु मेड एक्शन सीन्स लुक लाइक पोएट्री इन द आईपी मैन फिल्म्स। और निकोलाय कोस्टर वाल्डाउ, यानी कि हमारे अनफॉरगेटेबल जेमी लैनिस्टर फ्रॉम द गेम ऑफ थ्रोन्स, भी आज ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुए थे। देन वीव गॉट एक्टर जोनाथन रिज मायर्स, नोन फॉर द टू। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बेसबॉल सुपरस्टार एलेक्स रोड्रिगेज का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और क्रिकेट फैंस के लिए ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एलन बॉर्डर, जिनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स से लिखा गया है, वो भी आज ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो टैलेंट, एक्शन, कॉमेडी और स्पोर्ट्स सबका थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन बनकर तुम इस धरती पर आए हो, यानी कि फुल शाइनी पैकेज में गिफ्ट रैप करके तुम्हें ऊपर वाले ने यहाँ पर भेजा है। आज खुद को ट्रीट देना बिल्कुल मत भूलना। एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन, एक एक्स्ट्रा केक का स्लाइस, एक एक्स्ट्रा सेल्फी और एक एक्स्ट्रा स्माइल मेरी तरफ से। डॉक्टर मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं होती है। और बर्थडे विशेस, अपने बर्थडे शाउट आउट्स या फिर अपनी पार्टी के बर्थडे इनवाइट्स तो मुझे भेज सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चिपक के यही बैठने का, आने वाले मिर्ची दर बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब खनखनाने की और चमचमाने की बारी आ चुकी है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,065, $4,065 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी गोल्ड ज्वेलरी है जो आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी ज्वेलर से खरीदी, राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर के साथ आप अपना पुराना गोल्ड टेस्ट कराते हुए एक्सचेंज कर सकते हैं फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू में, जहां आप नई 22 कैरेट गोल्ड के डिजाइन हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी हो, आप एक्सचेंज करके नए सोने के गहने घर ले जा सकते हैं। और हमारी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें आप 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे, 9 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी, बिना किसी डाउन पेमेंट के गोल्ड का प्राइस लॉक आज करके ज्वेलरी घर ले जाएं और 9 महीने में पैसे दें। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे बातें करनी है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और ये है मिर्ची आवा का ट्रीट, जहाँ पर तीन अपडेट्स तुम्हें मिलती है। सबसे पहले क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग जॉइंड अ प्रोटेस्ट इन लंदन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स। द गैदरिंग वाज हेल्ड इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट इन इंडिया फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ग्रेटा सेड दैट द इंडियन स्टूडेंट्स मूवमेंट हैड गिवन पीपल होप। सेफ टू से दैट टुडेज कन्वर्सेशंस आरंट जस्ट ट्रेंडिंग ऑनलाइन, दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स टू। नंबर टू पर स्पीकिंग एट एन इवेंट इन हैदराबाद, आरएसएस चीफ मोहन भागवत सेड that the LGBTQ plus community is an integral part of society and deserves dignity and equal respect. He also spoke about the different ways people may come to identify as LGBTQ plus. And finally, a sad story coming from Seattle in the US. Authorities say multiple people were shot during a major food festival. At least two people have died, several others were injured, and a large police response followed. As of now, officials are continuing their investigation and have not released complete details about a suspect. Our thoughts are with everyone affected by this tragic incident. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hu Prisala tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब आ चुका है वो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, यानी कि राशि जोन का पहला पार्ट, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज किसी की क्रिटिसिज्म से ज्यादा अपनी इनर वॉइस सुनो। अगर दिल कह रहा है गो फॉर इट, तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। बस स्टबर्न और फियरलेस के बीच का डिफरेंस याद रखना। लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कॉन्फिडेंस हॉट है लेकिन अंदर थोड़ा सा डाउट भी चल रहा है। दैट्स ओके, हर सुपर हीरो भी सीक्वल से पहले नर्वस ही होता है, बस रुकना मत। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज एक नया आइडिया बल्ब की तरह क्लिक करेगा। जो दूसरे मिस कर रहे हैं, तुम वही अपॉर्चुनिटी देख लोगे। दिमाग को एयरप्लेन मोड पर मत डालना। लेकिन लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 14। कैंसर यानी कर्क राशि, आज फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। लाइफ कभी कभी गूगल मैप्स की तरह रीड आउट भी करती है, ट्रस्ट द जर्नी। लकी कलर फॉर यू इज ऑफ वाइट, लकी नंबर इज 6। लियो यानी कि सिंह राशि, आज अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखो। हर स्माइल जेन्युइन नहीं होती है, हर कॉम्प्लीमेंट फ्री एडवाइस के साथ आता है। शाइन करो लेकिन स्मार्टली। लकी कलर फॉर यू इज रॉयल गोल्ड, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा करो। हो सकता है मूड ना हो लेकिन फ्यूचर वाला तुम आज के तुम को थैंक यू बोलेगा। अडल्टिंग अनलॉक। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। एंड दैट वाज राशि जोन पार्ट 1। अगर तुम्हारी राशि अभी बाकी है, डोंट गो एनीवेयर, सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। आई विल बी बैक इन अ व्हाइल, तब तक तुम मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशि जोन पार्ट टू।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज स्पॉटलाइट तुम्हारे नाम रहेगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्लैप भी करेंगे, बस ओवर कॉन्फिडेंस को बैकस्टेज ही रहने देना। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, चेंज चाहिए बिल्कुल करो, बस इम्पल्स पे लाइफ का सॉफ्टवेयर अपडेट मत कर देना, थिंक फर्स्ट एक्ट नेक्स्ट। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज डिटर्मिनेशन फुल पावर पे है, अगर सब लोग नो बोल रहे हैं और तुमने होमवर्क किया है तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, लेकिन ईगो को नेविगेटर मत बनाना। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, अगर नंबर्स या फैक्ट्स मैच नहीं कर रहे हैं देन स्पीक अप रिस्पेक्टफुली, अपनी बात रखना ही लीडरशिप की पहली क्वालिटी है। लकी कलर फॉर यू इज ग्रे, लकी नंबर इज 8। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हो सकता है आज तुम्हारी ओपिनियन सबसे अलग हो, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले सिचुएशन को एक बार और देख लेना, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू पॉसिबिलिटीज। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 5। पाइसीज यानी कि मीन राशि, आज अगर एनर्जी लो है तो गिल्ट मत फील करो, थोड़ा सा रिचार्ज भी प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट है, नेटफ्लिक्स नहीं नैप भी सेल्फ केयर होता है। लकी कलर फॉर यू इज सी ब्लू, लकी नंबर इज 4। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट टू। मेरे यानी कि प्रिसला के साथ आज सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड कनेक्ट विथ मी। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

यार, जस्ट लाइक दैट आज का मिर्ची मॉर्निंग्स भी ना फिनिश लाइन तक पहुंच गया है। होप तुम्हारी चाय थोड़ी सी गर्म हुई होगी, कम्यूट थोड़ा सा इजी रहा होगा और मूड थोड़ा सा मिर्चीदार बना रहा होगा। जाने से पहले मैं बोले तो प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स तुम्हें एक स्माइल वर्दी अपडेट देकर जाती हूँ। एक्टर बॉबी रियोल एके लॉर्ड बॉबी ने एक मस्त कोइंसिडेंस शेयर किया है। उन्होंने मजाक में कहा कि जब भी उन्होंने शुभमन गिल के साथ हाथ मिलाया है उसके बाद गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी मार दी है। दो बार ऐसा हो चुका है। तो बॉबी सर बोले, लगता है मैं ही लकी चार्म हूँ। अब असली लकी चार्म हैंडशेक था या फिर शुभमन की सॉलिड बैटिंग फॉर्म, ये तो क्रिकेट फैंस ही डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर इतना आसान होता तो स्टेडियम के बाहर लाइन नहीं लगी होती कि बॉबी सर एक हैंडशेक इधर भी। इसी नोट पर मैं तुम्हारे साथ हैंडशेक कर यहाँ से टाटा बाय बाय बोल रही हूँ। साथ में तुम्हें एक वर्चुअल हाई फाइव भी भेज रही हूँ। मे योर मीटिंग्स बी शॉर्ट, योर कॉफी बी स्ट्रॉन्ग एंड योर ट्रैफिक लाइट्स सरप्राइजिंगली ग्रीन। और अगर तुम घर पर बैठ के मुझे एंजॉय करो तो आज का दिन तुम्हारा ऑसमेस्ट जाए। और इसी बात पर टाटा बाय बाय आएगा। अभी के लिए तुम मुझे फॉलो कर लो अगर मुझे मिस करोगे या फिर शो के बारे में तुम्हें कुछ बात करनी है। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था, तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा, पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सब के सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि ये ड्रेस का प्राइस वाज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वाज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस, एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल, लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: हम सबको पता था कि
3: जस्सी जस्सी कोई नहीं
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड द शो जस्सी जस्सी कोई नहीं वाज अ हिट, क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक। और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक कि दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार। एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था। और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी। एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट। और उस टाइम पर तो ज्यादा टफ भी नहीं था, बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं। और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर। और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी। काफी शोज आए काफी शोज गए, लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूं और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये हैं कौन से। यहां टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से हैं। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया, लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है। और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर टीवी के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Countdown shows में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो at that time this was just a melody for us. किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा?
0: मिर्ची 90s का सेट.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना.
2: तेरे भी जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा.
1: What a melodious track यार. लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था. लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा. And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते. मतलब वो जो रोज़ बातें हुआ करती थी, वो जो रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज़ से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की ज़िंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदायी हो जाता है यार. खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ. बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता. चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना. जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on

अब बहनों भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत हमने सुना फिल्म शिखर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और अंग्रेज बच्चों 68 मतलब 68। इस गाने के लिए आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन किंतु परंतु बट, ये गाना पहले लता जी को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से लिरिक्स थोड़े से डेरोगेटरी थे, यू नो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स, शंकर जयकिशन का ये कॉम्पोजिशन था, और उस साल गीत माला पर ये गीत पायदान नंबर 9 पर था। बड़ी हैरानी है मुझे, इसे नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन नंबर 1 पे जो गाना था वो हम सुनेंगे राइट है शागिर्द फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची,
1: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

आप आए, बाहर आई, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये मैं आपको भी बोल रही हूँ और जिस फिल्म का गाना हमने सुना उसका नाम भी बता रही हूँ। तो गाने में राजेंद्र कुमार जी, साधना जी उदास उदास होके ये गाना गा रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी वेल ड्रेस्ड हैं, लेकिन एज यूजुअल क्लीन शेवन नहीं है, हल्की हल्की स्टबल है उनपे। साधना जी सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए रो रही है, लेकिन उनका काजल लाइन और एकदम परफेक्ट है। हिमाचल की वादियों में ये गाना शूट हुआ था और हिमाचल से हम चलते हैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, जहाँ पे अगला गाना शूट हुआ था, जहाँ शर्मिला जी ट्रेन में बैठी हैं, मस्त सा जूड़ा बना के उस पे फूल भी लगा है, किताब पढ़ रही हैं और साथ में जीप में राजेश खन्ना जी पहाड़ी टोपी पहनकर उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं गाना गाते हुए। आराधना फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

कुछ चीजों की किस्मत में टूटना ही लिखा होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे उम्मीदें, सपने, वादे, खिलौने, चूड़ियाँ। चूड़ियों पर जरा एक शेर सुनिए, तनवीर गाजी साहब का है। मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टांका था, शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। एक ये शारिक कैफी साहब का सुनिए, कांच की चूड़ी लेकर मैं जब तक लौटा उसके हाथों में सोने का कंगन था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जिसमें बड़े प्यार से चूड़ियाँ गिफ्ट की जा रही हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: एक बार एक इंटरव्यू में राज कपूर साहब से मेरा नाम जोकर फिल्म के फेलियर के बारे में और उनकी फेवरेट फिल्म के बारे में पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था।
1: पंजाबी स्कंदन की माँ जीवेंदी सात कर्म न देंदी वंड, तो सात जनती तो है, वो सभी उसी को प्यारे हैं, वो कर्म नहीं बांट के देती, उनके अपने अपने कर्म होते हैं, अपना अपना योग होता है। तो मेरे लिए ये कहना पूछना आपका कि मुझे कौन सी पिक्चर अजीज है कौन सी नहीं, सभी तो मेरी हैं। हाँ, उनके अपने अपने कुछ करिश्मे थे जो कुछ बहुत ही चली हैं और कुछ नहीं चली। जिंदगी में भी ये होता है और शायद फिल्मों के बारे में भी ये होता है कि चंद तस्वीरें जो चलती नहीं है ना, तो वो कुछ रह जाती हैं पीछे, तो जो निकल जाता है आगे वो तो खैर खुद ब खुद बहुत ही अहमियत पा लेता है, बहुत से सहारे और प्रशंसाएं और ये सब कुछ उसके लिए होते हैं। जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है, तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर।
0: वाह साहब क्या बात है, इसी बात पे मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना सुनेंगे। शंकर जयकिशन जी का कंपोज किया हुआ, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, मुकेश जी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अब जो हम गाना सुनने वाले हैं वो एक विजुअल डिलाइट है, एन इवनिंग इन पेरिस का ये गाना जो पेरिस में शूट हुआ है। इसमें शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर जी हैं। शम्मी कपूर जी शर्मिला टैगोर को फॉलो कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं वो अपने एटीट्यूड में है। और पेरिस में बहुत अच्छे से शूट किया गया है गाना, जहाँ पे कभी ये रोड पे हैं गाड़ी में, फिर शर्मिला जी वो जो टूरिस्ट बस होती है डबल डेकर उसमें चढ़ जाती हैं, फिर वो पानी वाला स्टीमर होता है उसमें वो चढ़ जाती हैं। तो अलग अलग तरह से शहर को दिखाया गया है। और मैं जब भी इस तरह का कोई पुराना गाना देखती हूँ ना जिसमें दुनिया के किसी शहर को कैप्चर किया गया होता है, तो मुझे खुशी तो बहुत होती है और थोड़ा थोड़ा ऐसे गम भी होता है कि मैं जब भी पेरिस शहर को देखूंगी वो मुझे इस रूप में तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उसके नए रूप में शायद कुछ और नई बातें होंगी, लेकिन मुझे तो पुरानी बातें देखनी है ना जो मुझे शायद इसी गाने में या किसी और जगह जब पेरिस को उस टाइम पे शूट किया गया होगा किसी वीडियो में, वहां देखने को मिलेगी। खैर, अभी यहाँ पर ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on.

1970 की बहुत सारी फिल्में एक बहुत ही खास वजह से चली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और वो वजह थी राजेश खन्ना साहब की फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर। भाई 1969 में आराधना फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब तो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, सनसनी मच गई थी उनकी। तो उनकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करने के लिए दूसरी कई फिल्मों में उनकी फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर चलाया गया था, तो काफी पब्लिक दूसरी फिल्में देखने गई थी ये ट्रेलर देखने के लिए। और आन मिलो सजना उन 17 कंसेक्यूटिव हिट्स में से थी जो राजेश खन्ना साहब की उस टाइम फिल्में हिट हुई थी। इसी बात पे इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

1978 की एक फिल्म है हीरा लाल पन्ना लाल। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत ही टाइम पास फालतू टाइप की फिल्म है, जो 70s की टिपिकल फिल्म नहीं होती थी फॉर्मूला वाली कि बचपन में बच्चों के माँ बाप को मार दिया जाता है, फिर वो किन हालातों में बड़े होते हैं, बड़े होके बदला बदला लेते हैं, वो सब। लेकिन एक खास बात यह है कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में ना, जब क्रेडिट्स आते हैं, तब पुलिस फोर्स से माफी मांगी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बकायदा लिखा है उस अपॉलोजी में कि हमसे हमारी ओवर एंथुजियाज्म में ऐसा हो गया कि हमने पुलिस को गलत तरह से पोर्ट्रे कर दिया, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम किस तरह से पुलिस फोर्स को पोर्ट्रे किया गया है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे कई बार मुझे लगता है कुछ पुरानी फिल्में अगर आज के टाइम में रिलीज होती ना, तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी में आती कि बैन हो जाती, ट्रोल हो जाती। खैर, अभी के लिए हीरा लाल पन्ना लाल में से लाल निकाल देते हैं। हीरा पन्ना फिल्म का गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

एक बहुत पुराना 19वीं सदी का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक अमेरिकन सिविल वॉर सॉन्ग है, सिविल वॉर मतलब नॉट द मूवी, इट्स एन एक्चुअल वॉर सॉन्ग जो वॉर के बाद सोल्जर्स के घर आने की खुशी को दर्शाता है। ये एक अमेरिकन आयरिश म्यूजिशियन ने बनाया था गाना, जिसके बोल अंग्रेजी हैं, लेकिन ट्यून एक आयरिश फोक ट्यून है। थोड़ा सा सुनिए जरा।

अभी ऐसा सुनने में आता है कि इसी के म्यूजिक से इंस्पायर हुआ था वो गाना जो हम नेक्स्ट सुनने वाले हैं। अब वो हुआ था कि नहीं वो आप डिसाइड कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे.

मुझे ना YouTube पे रैंडमली पुरानी फिल्में देखने का बड़ा ही शौक है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और कुछ दिन पहले मैंने जो फिल्म देखी वो है 1980 की स्वयंवर। एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म गुंडम्मा कथा का रीमेक है। इसमें मेन लीड में संजीव कुमार, शशि कपूर, विद्या सिन्हा, मौसमी चैटर्जी हैं। बाकी नादिरा, डॉक्टर श्री राम लागू, शशिकला, असरानी, रंजीत, मदनपुरी, बहुत सारे लोग हैं। और सबसे अडोरेबल इसमें मुझे लगे संजीव कुमार जी, मुझे एनीवे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सीन कुछ यूं होता है कि वो खुद एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस बंदी से उनको शादी करनी है उसके घर में नौकर बन के रहते हैं। अच्छा, ये बंदी विद्या सिन्हा होती है और इसी बंदी की सिस्टर मौसमी चैटर्जी, ये थोड़ी नकचड़ी होती है। इनको सुधारने के लिए संजीव कुमार के जो भाई प्ले करते हैं शशि कपूर, वो इनके साथ कुछ ड्रामा करते हैं। फन एंटरटेनिंग फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो। अभी इसका गाना सुनेंगे जो फिल्म में शशि कपूर एंड मौसमी चैटर्जी पे पिक्चराइज्ड है। राजेश रोशन की कॉम्पोजिशन, गुलजार साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1980 की शान फिल्म की ओरिजिनल स्टार कास्ट पता है क्या थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी तो थे, लेकिन उनके साथ थे धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। लेकिन इन दोनों को, धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी को, रमेश सिप्पी साहब जिनकी ये फिल्म थी उनसे कुछ इश्यूज हो गए और दोनों ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह पे आए शशि कपूर एंड बिंदिया गोस्वामी। अच्छा, विनोद खन्ना साहब थे, लेकिन फिर उन्होंने सब मोह माया सांसारिक प्रेम छोड़कर स्पिरिचुअल गुरु की शरण में जाने का डिसीजन लिया और उनकी जगह पे आए शत्रुघ्न सिन्हा साहब। एंड ये बिलीव करने में ना मुझे कई बार ऐसे मुश्किल आती है कि शाकाल के रोल के लिए संजीव कुमार साहब को साइन किया गया था, लेकिन सैडली तब उन्हें उनका फर्स्ट हार्ट अटैक आया और उस वजह से उन्होंने फिल्म नहीं की। तब उनकी जगह पर कुलभूषण खरबंदा साहब आए और शाकाल बनकर सब जगह छाए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

शाहरुख खान का घर मन्नत। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये घर शाहरुख खान ने 90s में यस बॉस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिस्कवर किया और 2001 में इसे खरीदा। लेकिन उससे पहले ये घर काफी टाइम रेंट पे अवेलेबल होता था फिल्मों की शूटिंग के लिए। ऐसा सुनने में आता है कि ये घर लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी में बना था। विला वियना इसका नाम था। पहले इसके पारसी ओनर्स थे, उसके बाद काफी ओनर्स रहे और इनमें से कुछ ओनर्स ने इसे रेंट पे दिया फिल्मों की शूटिंग के लिए। एंड वन ऑफ सच फिल्म्स वाज तेजाब। तेजाब फिल्म में जो माधुरी दीक्षित का घर दिखाया गया है वो यही तो घर है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

मैं सोच रही थी जैसे कितने गाने हमारे लिए खास होते हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ के किसी याद से, किसी स्पेशल मोमेंट से जुड़े होते हैं। ऐसे ही फिल्म स्टार्स के लिए भी तो होते होंगे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बल्कि उन्होंने तो उन गानों में काम किया होता है। वो गाना शूट करते वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, बाद में फिर जब वो गाना सुनते होंगे उनको वो मोमेंट्स याद आते होंगे। एक बहुत ही स्पेशल गाना है जो ऐसा सुनने में आता है कि शम्मी कपूर साहब के पास जब उनके लास्ट डेज में जो मोबाइल फोन था ना, उसकी रिंगटोन था। शंकर जयकिशन का कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग पगला कहीं का फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बाबू मोशाय, इसको बोलते हैं पेडेस्टल इफेक्ट।
2: श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: अच्छा, वो वाली फीलिंग याद है, मानो आपका क्रश एकदम से सामने आ जाए और आपसे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर दे और आपकी होती है बोलती बंद। बस उसी फीलिंग को कहते हैं पेडेस्टल इफेक्ट, यानी आप किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो और वो एकदम से सामने आ जाता है तो आप ना कंपेरेटिवली अपने आप को ऑर्डिनरी समझने लगते हो उस इंसान से, एंड दैट इज वाई ये परसीव्ड गैप जो है वो कॉन्वर्सेशन को इंटिमिडेटिंग बना देता है। एंड मैं अचानक से ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ही राघव जुयाल के साथ हुआ। बेसिकली उनकी अपकमिंग फिल्म का फीलिंग याद है, मानो आपका क्रश एकदम से सामने आ जाए और आपसे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर दे और आपकी होती है बोलती बंद। बस उसी फीलिंग को कहते हैं पेडेस्टल इफेक्ट, यानी आप किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो और वो एकदम से सामने आ जाता है तो आप ना कंपेरेटिवली अपने आप को ऑर्डिनरी समझने लगते हो उस इंसान से, एंड दैट इज वाई ये परसीव्ड गैप जो है वो कॉन्वर्सेशन को इंटिमिडेटिंग बना देता है। एंड मैं अचानक से ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि कुछ ऐसा ही राघव जुयाल के साथ हुआ। बेसिकली उनकी अपकमिंग फिल्म का गैप जो है वो कॉन्वर्सेशन को इंटिमिडेटिंग बना देता है। एंड मैं अचानक से ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ही राघव जुयाल के साथ हुआ। बेसिकली उनकी अपकमिंग फिल्म का ही फॉरगॉट शाहरुख खान, जिनकी ऑरा फार्मिंग इस लेवल की है कि इंडस्ट्री में आगे आने वाले 7 पुश्ते भी शायद उस ऑरा तक ना पहुंच पाए। Anyway, आपकी जिंदगी में ये पेडेस्टल इफेक्ट कब आता है और किसको देख के आता है बताइएगा जरूर। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या इंस्टा पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
1: दिकीरो दिकीरो।

Mirchi. It's hot.

0: बड़े फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स तो होते रहते हैं सेनोरिटा।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ, ओके डोंट किल मी फॉर दैट, बट आई एम अ डाई हार्ड शाहरुख फैन। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें बड़े बड़े फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स की, तो वो जनरली तो नहीं होते, बट जब होते हैं तो हमारे दिल को छू जाते हैं यार। सो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट ग्रैंडर, जो बहुत सारे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के साथ आती है, बहुत बड़े बड़े सेट्स के साथ एंड बड़ी बड़ी स्टोरीज के साथ आती है। लेकिन एवरी वंस इन अ व्हाइल वी आर लकी इनफ टू फाइंड अ कैरेक्टर जो एक कैटलिस्ट के जैसे काम करता है इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंड्रेला की बात करें तो उसमें फेरी गॉड मदर जो है, भले ही उनकी ग्रैंड एंट्री नहीं होती, बहुत सारे डायलॉग्स नहीं होते, स्क्रीन टाइम नहीं होता, बट वो एक छोटे से टाइम के लिए आके उस पूरी कहानी को मैजिकल बना जाते हैं। और कुछ ऐसे ही बॉलीवुड फिल्मों के कैरेक्टर की आज हो रही है बात थ्रू माय पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वील टॉक अबाउट फिल्म मसान से पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर के बारे में। भाई साहब, ये एक्टर तो अपने सटल कैरेक्टराइजेशंस के लिए मशहूर हैं ही, और मसान फिल्म में इनका जो प्रेजेंस है, इट इज अ वैलिडेशन फॉर दैट। इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है संध्या का, वो एक एंड्योरिंग कैरेक्टर है जो देवी को सोसाइटी के परसेप्शन से ऊपर देखता है, उससे अलग देखता है। जिस तरीके से वो सिंपली आते हैं और एक सेंस ऑफ वार्मथ छोड़ के जाते हैं, फॉर इंस्टेंस जब वो देवी से अपने पापा की बनाए हुए खीर की बात करते हैं एंड इंसिस्ट्स हर टू इवन ईट इट, माय हार्ट वाज फुल एट दैट टाइम, आई एम टेलिंग यू। खैर, अभी ऐसी ही और भी कुछ कैरेक्टर्स की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण की बात करूंगी, क्योंकि इसका ट्रेलर हो चुका है पोस्टपोन। सो नमित मल्होत्रा प्रोडक्शंस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है दैट सोनी पिक्चर्स हैज कम ऑन बोर्ड फॉर ग्लोबल रिलीज ऑफ द मूवी आउटसाइड इंडिया, एंड इसी की वजह से इसके ट्रेलर को अभी के लिए पोस्टपोन किया गया है। बाकी नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यश एंड रवि दुबे पिवटल रोल्स में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट इज सेट टू रिलीज ऑन दिवाली 2026। बाकी की रीड्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। सनी देओल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बटवारा 1947 को CBFC ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। ये पहली बार हुआ है जब सनी देओल की कोई फिल्म अडल्ट्स ओनली रेटिंग के साथ पास की गई है। बाकी द मूवी सेट टू रिलीज ऑन द 14th of August, जो 2 घंटे 25 मिनट और 34 सेकंड की होने वाली है, यानी कि 145.34 मिनट्स लॉन्ग। आहान शेट्टी और शर्वरी वाघ का कॉम्बिनेशन, भाई आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो आहान शेट्टी की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी इन बॉर्डर 2। ऑल दो इन दोनों एक्टर्स की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, और इस फिल्म को उसका रिलीज डेट मिल चुका है, विच इज 24th of March नेक्स्ट ईयर। इट इज गोइंग टू बी अ रोमांटिक एक्शन ड्रामा, जिसमें इन दोनों एक्टर्स के अलावा बॉबी देओल और ऐश्वरी ठाकरे भी नजर आएंगी। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट। ढूंढ

Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। प्यार